0: सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में। छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं, गिला की करा जमाने ते, गिला की करा जमाने ते, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं, मेरी ता अपनी बनी माँ नहीं। बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, बेगाने आज पोगल नू भेज के माए, कीता अखा तो लेनी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी, हुन लुक लुक, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओ लेनी। काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, काली तुयो मचाई सी माए, मैनू पाने दी डोलेनी, मैनू पाने दी डोलेनी। शुक्रिया साथू, बहुत बहुत मेहरबानी।
1: प्यारे श्रोतियो, सुरेंद्र भोगल जी तो बाद हुण असीं सद्दा देण जा रहे हां इंग्लैंड वास्ते शायर तारा सिंह जी नूं। तारा सिंह जी वैसे दे पंजाब दे जिला जलंधर दे एक वड्डे पिंड कुकड़ पिंड नाल संबंध रखदे ने, ते बहुत लंबे समय तो वह बर्मिंगम दे नेड़े रहिंदे ने। उत्थे वह इंडियन वर्कर एसोसीएशन दे नाल जुड़े हुए ने। इस दे नाल दी नाल वह अपनियां मनोभावनावां नूं जिहड़ा आ उह कविता दे विच व्यक्त करदे ने, ते उह साडी काम महफिल दे विच पहली वारी आ रहे ने, उहनां दा असीं स्वागत करदे हां। तारा सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੀਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਛੂਣਾ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਸਮ ਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਵਾਮ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੈ।

जे डूब गई जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जर क्या भी नहीं, सूली

जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना अजे भी, वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादिया चे डूब गई, जिंद वादिया चे डूब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेहरे तेरा ऐ जिस्म लोहा।

0: या इस तरह आर्ट्स के सब्जेक्ट उन्होंने चंगे लग देने तो आर्ट्स में जा सकता है, या
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: मेडिकल बायो के सब्जेक्ट चंगे लग देने तो वो मेडिकल लाइन चूज कर सकता है। बट
1: बिल्कुल
0: वो स्टेज आती है बच्चे के करियर से 8th 9th 10th तक। अब पेरेंट्स का जरा फर्ज है वो ये है कि 8वीं तक बच्चे नूं उस 8वीं तक लेके जान ली ग्रूम करे। ग्रूम
1: जी
0: किस
1: जी
0: तरह
1: जी
0: कर सकते हैं कि
1: हाँ जी
0: बच्चों के इंटरेस्ट नूं समझने की कोशिश करे, उन्हें टाइम दे, उसकी दोस्ती किस किड़े बच्चों की दोस्ती हो रही है, वो की कर रहा है, कि खेडों से उसका इंटरेस्ट है, स्कूल तो आने तो बाद वो की करता है,
1: मॉनिटरिंग
0: उसके
1: तो होए।
0: टीचर्स किस तरह मॉनिटरिंग जो करेंगे 8वीं तक उन्होंने प्रिपेयर करेंगे, एक लॉन्च पैड देंगे
1: जी जी
0: 8वीं 9वीं तक,
1: बिल्कुल
0: उस तो बाद जो बच्चा अपने करियर के टेक ऑफ कर सकता है। तो इस करके पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अपनी इच्छावान उन्होंने तो पूरी कराइए, पर ये नहीं कि जी मैं तो अज मेरा बच्चा होया तो मैं हूँ अपनी सारी इच्छावान इस तो पूरी करानी है। इट विल
1: जी
0: टेक टाइम, वो तुसी आफ्टर 10 और 12 ईयर्स उससे कर सकते
1: मतलब लाल किला सीधा नहीं बनना, पहले बुनियादा पुटनिया
0: हो।
1: पैनिया नींह रखनिया पैनगियां,
0: बिल्कुल
1: फिर ही ताजमहल या कुतुब मीनार कुछ बनगी। तो
0: बिल्कुल
1: बाकी एक जदों चलो पेरेंट्स ने उन्होंने 9वीं 10वीं 9वीं 8वीं तक कोई भार नहीं पाया कि ठीक है बच्चा जो करता है करन दो, एक गीत गाँव दो, नचता है कुछ करता है, साइंस पढ़ता है क्या बनता है कुछ नहीं, लेकिन फिर वो अगे बच्चा पहुंच जाता है 9वीं 10वीं के बच्चे, वो एक बड़ा ही क्रिटिकल जहा पीरियड बच्चे लिए भी होंगे कि उदों विषय की चोन बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इंट्रस्ट शो करता है कि यस मैं मैथ विच बहुत गुड हाँ, जब मैनू कोई लिटरेचर अच्छा लग रहा है या कुछ अच्छा लग रहा है, उदों वो ट्रेट्स कुछ कुछ उभरने शुरू हो जाते हैं कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अगे जाके की करने वाला है। उस वे बच्चा जो है टीचर है बच्चा है अध्यापक, वो एक तरह चौरस्ते च खड़े होंगे कि हूँ आपने जे हूँ नहीं सोचा फिर कुछ नहीं हो सकता,
0: बिल्कुल
1: ये पूरी जिंदगी का सवाल ही है। ये दो विशेष तौर पर क्लासा 9वीं 10वीं च इतने बच्चे की ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लैवल से अपन जी सोचिए।
0: बच्चे नूं इस स्टेज के उत्ते सपोर्ट ते मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होंगी है। कि कुछ गल्ला इस तरह नहीं होंगी है, वो चेंजेस शरीर से भी चेंजेस आ रहे होंगे, उसके माइंड भी वो
1: हाँ
0: शेप अप कर रहा होंगे कि मैं अगे की करना। इस वेले जे उन्होंने कम्युनिकेशन गैप आ जाए अपने पेरेंट्स नाल या इनफैक्ट कई बार टीचर्स नाल, तां वो दे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस करके पेरेंट्स नूं टीचर्स नूं चाहिए बच्चों नाल उस वेले अपना कम्युनिकेशन जरा वो चंगी तरह बना के रखन, उन्होंने सपोर्ट देन, उन्होंने मोटिवेशन देन। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिना
1: जी जी जी जी
0: कि जो असं भी बच्चे होंगे सी, मैं मेरे भरा मेरे दोस्त, असं नॉर्मली ये गल सुनते होंगे कि टीचर्स या पेरेंट्स वेले कहते हैं कि ये तो जी क्रिटिकल स्टेज है 8वीं 9वीं 10वीं की,
1: जी जी
0: तुसी
1: जी
0: ये 2 3 साल जड़े बोर्ड की क्लासा पार कर लोगे,
1: बिल्कुल
0: हुण मेहनत कर लोगे सारी उम्र तुसी ऐश करोगे।
1: यही
0: जे हुण
1: होना
0: तुसी ऐश कर ली 2 3 साल दे, सारी उम्र तुहानू
1: फिर
0: मतलब दिहाड़ी करनी पैनी
1: दिहाड़ी में
0: है,
1: पछतावा ही
0: फिर
1: रहेगा।
0: पछतावा रहना है।
1: हाँ जी हाँ
0: असी
1: जी
0: सोचते हैं कि भाई बड़ी मतलब एक वधिया गल दसी, असी 2 साल मेहनत कर लेंगे, 9वीं 10वीं
1: बिल्कुल
0: चलो चंगे नंबर आ जाते हैं,
1: बिल्कुल सही
0: फिर
1: गल
0: जो 11वीं होंगे टीचर बदल जाते हैं, पेरेंट्स तो चलो उही गल रिपीट करते रहते हैं कि एक 11वीं 12वीं होर तुसी मेहनत कर लो,
1: है। हाँ
0: फिर
1: जी हाँ
0: सारी
1: जी
0: उम्र तुहाडे 60 साल जड़े
1: बिल्कुल
0: ऐश दे निकलेंगे। असी फिर सोच के मेहनत कर लेते हैं कि चलो 2 साल बोर्ड कर लेंगे
1: दो
0: मेहनत,
1: ऐड हो गए चलो कोई
0: दो
1: गल
0: और
1: नहीं।
0: है,
1: हाँ
0: कोई बच्चा कर लेना मेहनत कर लेना, कोई डॉक्टर
1: जी
0: बन
1: हाँ जी
0: जाता है 12वीं तो, इंजीनियरिंग लाइन चला जाता है, कोई सर्विसेज वगैरह कितने चला जाता है,
1: हाँ जी हाँ
0: उस
1: जी
0: तो बाद तो फिर एक बार डॉक्टर बन ही गया फिर तो मेहनत करनी
1: फिर
0: पैनी
1: तो गड्डी ली ते आ गई है, फिर
0: फिर तो
1: तो
0: आ
1: जाना
0: गया।
1: ही
0: उस तो बाद मतलब कहने की गल है कि किसी भी तरह नाल इस तरह की गल्ला नाल या कोई होर किसी मोटिवेशन नाल जे बच्चे नु आपा उस वेले सपोर्ट दे दिए, उन्हों आपा किसी तरह रीइंफोर्समेंट दे दिए, तो उसका सारा जोड़ा
1: जी
0: करियर है उस वेले शेप अप हो सकता है। तो उस वेले पेरेंट्स नु टीचर्स नु ये बहुत सोचने की लोड है कि किस तरह अपने बच्चों अपने अपने विद्यार्थियों को किस तरह इस चंकी सपोर्ट दे सकते।
1: बिल्कुल सही जी, ये तो यही एक तरह का कह लो कि क्रॉस रोड्स ने,
0: बिल्कुल
1: इन्हों के उत्ते ही सही ट्रैक पकड़न की लोड़ होंगी है। तो बड़ी वधिया गल तुसी कीती, वैसे तुसी डॉक्टर भी हो, मैं जे निजी सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो MBBS हो फिर तुसी ट्रैक बदलते हो फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
0: डॉक्टर बनन दी जेड़ा सुपना सीगा वो एक्चुअली इस जड़ी मैं गल कह रहा सी मेरे पेरेंट्स नहीं सी, मेरा सुपना नहीं सीगा,
1: जी जी
0: जस्ट
1: जी
0: दैट
1: जी
0: कि उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपनी क्लास च पिछे वाली कतार च ना हो, अगली कतार च रहे। सातवीं अठवीं तक यही चलता रहा, खेडां च भी ठीक सीगा, खेड कूद भी ठीक
1: हाँ
0: लेंदे सी।
1: जी
0: जिहड़ी गल
1: ठीक
0: मैं आखी कि अठवीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड दे पेपरां नूं बड़ा हवा बनांदा, साडे टाइम च अठवीं बोर्ड दी हुंदी
1: है
0: सीगी।
1: जी।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास कर

मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मिल मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चंदी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चंदी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन्न दी सैर दे नाल ही असीं इस कामे फल दा इत्थे ही समाप्ति करने आ ते अगली कामे फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

किस काम का तू सहारा, अगर ना किसी का बना। तो ये जीवन तेरा है, ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है, ये किस काम का। एक बार ही मिलती है ये।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

तू ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

हाथ है आया आज जो वीरा समान एवें गवाई। हाथ है आया आज जो वीरा समान एवें गवाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष अगे वधाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष नू अगे वधाई। इकट्ठे

लए बापू दे सिर ते सारे शौक पुगा ले, रेबन ला ले चिट्टे पाले बापू दे सिर ते सारे शौक पुगा ले, कने लाके सुन हुकम कने लाके सुन हुकम, समय दी सरकार दा हथ चो फड़ा ता करंट नंगी किसे तार दा, हथ चो फड़ा ता करंट नंगी किसे तार दा, खड़ा बेबस हो के खड़ा बेबस हो के मान रख दस तार दा, आजा पुत्ता आजा बापू तरने च वाजा मार दा, आजा पुत्ता बापू तरने च वाजा मार दा, मां पुत्ता

रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लिआउणा पैना, इनकलाब दा पुत्तर लिआउणा पैना। सच कहिंदे ने सियाणे झट आई उत्ते आया, सच कहिंदे ने सियाणे जे झट आई उत्ते आया, सच कहिंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे, सच कहिंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने,

छत तो आने तू भी दाने आईयो काने अणख आबरू खोण नी देनी अणख आबरू खोण नी देनी तरत मोहताज।